हाँ बुजुर्ग पर आ रे वह फले के हम लुआ है वरना ला दिमाग ले अंचिंगों ने वखला वक्त बा वेंट इन लो बगले रोट जा शेह बाके मुग अब्बा पाप दे मन्यो के अमल फी की तू बा इतालिया उस दाला के बामों ने उस दाला